सिर्फ 20 या 25 दिन में हम आपके गंजे सर को इंशाल्लाह बालों से भर देंगे। सर की जिस जगह से आपका बाल गिरा है बिल्कुल अल्लाह के करम से उसी जगह पर बाल आपका वापस आएगा, वो भी इंतहाई तेजी के साथ, और इंशाल्लाह फिर मरते दम तक आपके बाल गिरेंगे नहीं। ये ऑयल सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 दफा आप सर पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के करम से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। हमारी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओरिजिनल खालस और एक नंबर है। इसमें अल्लाह के करम से किसी किस्म का कोई झूठ और गलत बयानी बिल्कुल हरगिज नहीं है। इसके अलावा बालों की हर किस्म की बीमारी इंशाल्लाह हफ्ते भर में खत्म हो जाएगी, चाहे बाल चर है, खुश्की है, सिकरी है, रूखापन है या ग्रोथ का इशू है। अभी हमसे राब्ता करें, मुकम्मल मालूमात लें और अगर आपको तसल्ली होती है तो हमें ऑर्डर आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।

0: ओके जी हुरैन भाई, रोना नहीं है, होना तैयार कर दी और मैं आपकी बहन आपके लिए चाय तैयार कर दी। ओके जी, और एसएमएस पे भेजूंगा। मुझे रियल में चाहिए, मुझे चाय के लिए दिल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
1: क्या कहेगा जहां
0: भाई चाय का ब्याह प्रोग्राम का नाइला एंड्रूस ने उन्होंने लगा ची चाय लगा ची लगा चाय संग उसका मगोरे खमदा। हाय कैसे हो आप?

हर इंसान ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, सुकून मुयसर नहीं है, लोगों के बड़े संगीन मसाइल हैं, बहुत से लोगों को संगीन मसाइल का जो है वो दुश्वारियाँ वगैरह और मसाइल का सामना है। इन सारे मामलात में यानी रोज़गार का निज़ाम आपके सामने है कि लोग रोज़ी रोटी के लिए कितनी मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, कारोबार लोगों के किस हद तक बर्बाद व तबाह हो चुके हैं, जॉब्स नहीं हैं, यानी दो वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। इसके साथ साथ बाकी बीमारियां हैं, ज़हनी परेशानियां हैं, डिप्रेशन, यूथ जो है हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बाकी बीमारियों का उनको सामना है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया का दौर है, दिखावा है, लोग जो है वो ज़हनी तौर पे डिप्रेस होते चले जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगियां जो है उन्होंने अजीरण बना ली। उसमें बहुत सारा किरदार लोगों का अपना भी है, ख़ुद को जो है वो मुकाबले में आगे लाने की कोशिश ना करना, ख़ुद को ग्रो ना करना, अपने ऊपर तवज्जो ना देना, मेहनत ना करना, कोशिश ना करना, तो इससे भी बहुत सारे ऐसे अवामिल सामने आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जन्म लेती हैं जो आपको पीछे रखती हैं और आपको ग्रो करने में मदद नहीं करती। तो जब आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जब आप बाहर रोज़ी रोटी के लिए निकलते हैं, जब आप दोस्तों में बैठते हैं, तो आप एहसास कमतरी का शिकार होते चले जाते हैं और ज़हनी तौर पे आप जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी जो यूथ है वो मफलूज हो चुकी है और साथ में बेहिस भी हो चुकी है। और उसके साथ साथ जितनी भी हमारी जो यूथ है उसमें मेजॉरिटी हड हराम भी हो चुके हैं, यानी कोई तैयार नहीं है मेहनत करने को, कोई तैयार नहीं है कोशिश करने को, जिद्दोजहद करने को। एक बंदा है, अगर वो होटल में एक लड़का काम कर रहा है, किसी मैकेनिक के साथ काम कर रहा है, किसी दुकान पे मुंशी है, तो उसकी वो जो 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह है उसने अपनी सारी ज़िंदगी उसी 10-12 हज़ार के इवज़ ही बना ली होती है। वो कोशिश नहीं करता अपने ऊपर अपने आप को ग्रो करने के लिए, मेहनत नहीं करता, जिद्दोजहद नहीं करता, स्किल्स नहीं डिवेलप करता कि वो आजकल के इस दौर में इस माशरे में कम्पीट कर सके, मुकाबला कर सके, ख़ुद को एक बेहतर मुकाम पर ले के आ सके। यहाँ पे एक और सवाल जन्म लेता है कि जी ये तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा पैसा कमाए, ज़्यादा कामयाब हो, लेकिन उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो एक रोड मैप होता है, जो एक सही रास्ता होता है, जो सही सिमत में जिद्दोजहद होती है, वो करने के लिए कोई तैयार नहीं। इस वजह से जो पूरा निज़ाम है हमारे मुल्क का वो धर्म भरम नज़र आता है। हमारा जो नौजवान है उसने उसको टिकटॉक वीडियो, सिर्फ टिकटॉक वीडियो बनाना, स्टिंग की बोतल हाथ में पकड़ के और एक खूबसूरत सा लड़का साथ घुमाना, यानी जब हमारा नौजवान, अगर मैं अपने माशरे की बात करूँ टांग की, तो अगर इस पर आप जरा थोड़ा सा गौर करें तो जैसे ही किसी के पास दो पैसे आते हैं सबसे पहले वो एक 125 मोटरसाइकिल ख़रीदता है, फिर उसके बाद वो एक खूबसूरत लड़का अपने साथ घुमाता है, उस पर ख़र्चे करता है और बस इन्हीं असर के टाइम उसका घूमना होता है, या मुर्ग रखा होता है, या बटेरबाजी होती है, मोबाइल रखा होता है, या लड़कियों के साथ। तो ये हमारी जो यूथ है वो इस मामले में इस तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। हम सब इस चीज़ से गुज़र के आ चुके हैं, गुज़र रहे हैं। बाज़ दफ़ा आप पे वक्ती रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, ज़िम्मेदारियाँ आयद हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप इन तमाम दर चीज़ों को नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है और आप थोड़े से आज़ाद होते हैं तो हर एक शख्स ये करने की कोशिश करता है। अब चूंकि हमारा माशरा इस तरह से बन चुका है, यहाँ पे लोगों की अयाशी के यही असबाब हैं, तो वो इसी को ही इस्तेमाल करके करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन सब का कानून की अवेयरनेस से क्या लेना देना। तो ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि ये जो हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारी यूथ की जो एक्टिविटीज़ हैं, शॉर्ट टाइम प्रॉफिट के पीछे भाग रहे।

है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई चांदी खरीद रहा है, कोई ट्रेडिंग में लगा हुआ है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई जो है डबल शाह के हत्थों चढ़ गया है। शॉर्ट टाइम पैसे, बगैर मेहनत के पैसा कमाने की एक सोच बन गई है कि मेहनत किए बगैर पैसा है और बहुत आए, जो कि मुमकिन नहीं है। हाँ, एक आदमी की किस्मत बहुत अच्छी हो सकती है कि जिसको बगैर मेहनत के बहुत सारा पैसा मिल जाए, लेकिन दुनिया का ये दस्तूर नहीं है, ये निज़ाम नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम नहीं है। ये दुनिया का दस्तूर है, निज़ाम है, जो उसूल है वो मेहनत के साथ जुड़ा हुआ है। क्या आप मेहनत करेंगे, साथ में किस्मत आपकी होगी, लेकिन मेहनत शर्त है। मेजॉरिटी यही होगा कि मेहनत के साथ आपको मिलेगा। वो एक अलग बात है, किसी का जो है वो जिस काम में कोई हाथ डाले उसका वो कामयाब हो जाता है, और कोई कोई बेचारा हर कामयाब चीज़ में भी हाथ डालता है तो वो नाकाम हो जाता है। वो किसी किसी के साथ ये किस्मत जुड़ी हुई है, लेकिन ये हर जगह ये चीज़ हमें ये उसूल नज़र नहीं आता, ये एक्सेप्शन है। बाकी मेहनत शर्त है, आप मेहनत करें, अपनी कोशिश करें, जिद्दोजहद करें। फिर मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ टांग के लोगों को कि इन हालात में अगर कोई एक जवान मेहनत करके आगे निकलने की कोशिश कर रहा है तो वो काबिल दाद है। कि इन हालात में टांग के, आजकल के हालात में, कि डी खान में और टांग से बाहर जितने भी लोग रहते हैं वो टांग आना मुनासिब नहीं समझते, यानी उनको, उनके लिए मुनासिब नहीं है कि वो टांग आए। इतना रिलक्टेंट है लोग, इतना डरते हैं। मेरा एक दोस्त है, वकील है, उसने मुझे पिछले दिनों मैसेज किया कि यार कभी डी खान, मैं पेशावर से आ रहा हूँ, पेशावर में होता है वो प्रैक्टिस वहाँ करता है, तो मैं डी खान आ रहा हूँ, तो मैं 4-5 दिन यहाँ होऊंगा, तो तुम डी खान आ जाना, तो वहाँ गपशप भी लग जाएंगे, कोई खाना शाना भी साथ खा लेंगे। तो मैंने कहा यार मुझे बुला रहे हो तुम, वैसे छुट्टियों पर आ रहे हो टांग का। उसने कहा यार खुदा का नाम लो, टांग डी खान रोड, टांग का रोड है सही कि मैं वहाँ टांग का हूँ। यानी लोग, अब वो एक आम सा, मतलब छोटा सा वकील है मेरी तरह सा, ठीक है, 2-3 साल उसकी प्रैक्टिस है, अब कौन उसको जानता होगा है क्या, लेकिन उसके जहन में भी इतना डर सवार है कि यार, और ख़ुद उसका ताल्लुक भी वज़ीरिस्तान से है, यानी सारी ज़िंदगी जिन्होंने जंग देखी है। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों के जहन में ये इमेज है जो बाहर रह रहा है, और अब सोचें कि टांग के लोग किस जहनी कोफ्त का शिकार होंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बाहर शहरों में रह के रात को निकलना गवारा नहीं करते कि जी हालात ख़राब है, तो टांग के लोगों का सोचें क्या हालात होंगे, या वो किस जहनी कोफ्त से, किस जहनी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। अब ये सारी कहानी सुनाने का मकसद क्या था, ये सारी बात करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि इन सारी चीज़ों का एक जहन पे, और ख़ासकर मर्दों के जहन पे एक इम्पेक्ट है हमारे माशरे में, चूँकि ख़वातीन हमारे माशरे में, वो एक अलग बात है, घरों में रहती हैं, बहुत कम जॉब्स करती हैं, ज़्यादातर ख़वातीन घरों में होती हैं, तो मर्द बाहर आता है तो बाहर एक्सपोजर उसको करना पड़ता है इन तमाम हालात वाक़ियात का, बम धमाका होगा, मरेगा मर्द, तो उसको बहुत सी तकलीफ़ का सामना है। अभी सारे सिस्टम में इस सारी तकलीफ़ के बाद जब वो शाम को घर जाता है तो उसको जो एक जहनी सुकून मिलता है वो उसके घर के हालात के होते हैं की वजह से होता है। यानी अगर उसके पास अच्छी बीवी है, उसके घर की अच्छी ख़वातीन हैं जो ख्याल रखने वाली हैं, ख़ासकर शादीशुदा अगर अब हैं तो आपकी बीवी बहुत डिपेंड करती है कि वो कोऑपरेटिव है, वो आपके साथ चलने को तैयार है, आपके मुश्किल में, दुख दर्द में आपको समझने की तैयार है, तो ऐसी सूरत में फिर ये होता है कि जी आप घर से एक जहनी सुकून हासिल करते हैं। आपको सारे दिन की, अगर आपके बच्चे हैं और सेहतियाब हैं, आपके घर में बीवी है वो ख्याल रखती है, तो वो सारे दिन की जो थकान होती है वो आधी ख़त्म हो जाती है। और अगर आपकी बीवी ना फरमान है, वो ख्याल नहीं रखती, तो फिर वो चीज़ आपकी डबल हो जाती है, टेंशनें, दुख, तकलीफ, परेशानियाँ आपकी बढ़ जाती हैं। बहरहाल, तो ये आज इसी थोड़ा सा टॉपिक पे, कानूनी पहलुओं पे सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स आई हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन करते हुए आज का प्रोग्राम गुजरेगा। बाकायदा आगाज़ से पहले आप हमारा नंबर नोट कर लें, 09635114888, 09635114888। इस पर आप हमें कॉल करके इस प्रोग्राम के दौरान आपका कोई भी अगर कानूनी मसला है, आपको किसी किस्म की कोई कानूनी दुश्वारी का सामना है, आपको कोई भी मसला आ रहा है, आपको, आपका अगर आप कोई केस चल रहा है उसके मुतालिक आप कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं, आपको कोई और मालूमात हासिल करनी है, कुछ भी कानूनी, कुछ भी, तो आप इस प्रोग्राम के तवसुत से हमें इस नंबर पर 09635114888, 09635114888। यानी अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि आप इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हमें समझ नहीं आती, आप उर्दू में बताया करें, तो यह 09630963
5114888 इस नंबर पे आप हमें कॉल करके अपना मसला हमारे सामने रख सकते हैं।

अच्छा, तो जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि आप को जो जहनी ये जो तकलीफ़ का सामना है या जिस तरह के हालात हैं, इसमें जो एक सुख की घड़ी है, एक राहत की घड़ी है, वो मिलती है आपको अपने घर से। अगर आप अपने घर में सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो बहुत सारे आपके मसले हल हो जाते हैं। अब इन्हीं ख़ानदानी मसाइल पे, यानी जो हमारे फैमिली केसेस होते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान जो इख्तलाफ आ जाते हैं, और अक्सर ख्वातीन फिर अदालत से रुजू करती हैं मुख्तलिफ, चूँकि उनके पास ख्वातीन के पास रास्ते होते हैं, वो तलाक भी अदालत से ले सकती हैं, वो खुला ले सकती हैं। अब इस सारी बात को समझने से पहले दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। एक होता है तनसीख, एक होती है खुला कानूनी तौर पर। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट फैसला दिया, और उस फैसले के तनाजुर में हम बातों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक है तनसीख, एक है खुला। अब तनसीख क्या है, खुला क्या है, लीगली जो हम समझते हैं, तो तनसीख निकाह ये होता है कि जब कोई खातून अदालत से रुजू करे, अदालत के अंदर केस दायर करे और उसमें कुछ वजूहात बयान करे उस शादी को ख़त्म करने की, जैसा कि वजह है कि जी उसका शोहर पिछले 4 साल से लापता है। 4 साल से उसका शोहर, कानून के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तानी कानून है, 4 साल से उसका शोहर लापता है, उसका कोई अता पता नहीं, वो कहाँ है, किधर है, कहाँ गया हुआ है, किसी के साथ कोई रابطہ नहीं हुआ। तो 4 साल बाद कानून कहता है कि उस औरत को ये इख्तियार है कि वो अदालत से आके तनसीख ले ले, उस शादी को ख़त्म करके वो दूसरी शादी करे, या उसके शोहर को कम अज़ कम 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। कम अज़ कम 7 साल कैद की सज़ा हो गई। अगर किसी खातून के शोहर को कम अज़ कम 7 साल कानून के मुताबिक कैद की सज़ा सुना दी जाती है, तो ऐसी खातून को हक हासिल होता है कि वो खुला का दावा, यानी तनसीख का दावा अदालत से ले सकती है और उस शादी को ख़त्म कर सकती है। इसके अलावा अगर किसी औरत का शोहर ना मर्द है तो वो अदालत से रुजू करके दावा कर सकती है और तलाक ले सकती है। खर्चा नानो नफका अदा नहीं करता, क्योंकि ये मर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपनी इस्तेआत के मुताबिक जितना वो कमाता है उसके अकॉर्डिंगली अपनी बीवी को तमाम तर खर्चा, खुराक वगैरह अदा करेगा। अगर वो नहीं दे रहा तो वो तनसीख खुला का दावा दायर कर सकती है। इसी तरह जी, अगर वो जो उसका मर्द है वो तशद्दुद करता है, इंतहाई मार पीट से काम लेता है, जुल्म करता है, जाबिर किस्म का शख्स, तो तनसीख का दावा कर सकती है। इसके अलावा अगर तनसीख नहीं लेना चाहती और कोई ऐसी औरत है जो कहती है कि मेरा शोहर मुझे खर्चा नान नफका अदा नहीं करता, मेरा हक महर उसने अदा नहीं किया, तो वो तलाक के अलावा हक महर वगैरह हासिल करने के लिए, नान नफका हासिल करने के लिए भी अदालत से रुजू कर सकती है, और अदालत से वो दावा दायर, अदालत में दावा दायर करके वो हासिल कर सकती है। अब जब इस तरह के तनसीख के दावे अदालत के सामने आते थे तो औरत को ये चीज़ साबित करनी होती थी, यानी जिस चीज़ की बुनियाद पे वो तनसीख ले रही है, अदालत में आके उसको वो बात साबित करना होती थी कि जो इल्ज़ाम मैं लगा रही हूँ, जिस बुनियाद पे मैं ये दावा दायर कर रही हूँ, वो बुनियाद बिल्कुल ठीक है। तो अगर अदालत वो बुनियाद साबित होने के बाद वो तनसीख करती थी तो औरत को उसके तमाम तर हकूक दिलवाती थी। क्या क्या हकूक, यानी उसका हक महर पूरा शोहर को कहती थी कि अदा करे, जितना टाइम तक वो तलाक नहीं हुई और तलाक हो, यानी अदालत में जिस दिन डिग्री आ रही है उससे पहले जितने साल का उसने नान और नफका मांगा हुआ है वो सारा डिग्री हो जाता था। इसके साथ साथ जी इद्दत के पीरियड के दौरान का जो खर्चा है वो भी डिग्री हो जाता था, समान जहेज़ वो भी डिग्री हो जाता था। अच्छा, यहाँ पर समान जहेज़ के हवाले से एक और बात भी समझें, क्योंकि हमारे इलाका पश्तों का इलाका है तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऐसा होता है कि जो लड़की वाले हैं वो सामान नहीं लेते, यानी लड़का जो होता है वो जहेज का सामान खुद लेता है। ये बात बड़ी ज़रूरी मैं करने जा रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनो। यानी
हमारे इलाकों में शादी का तमाम तर खर्चा लड़के वाले बर्दाश्त करते हैं, मेजॉरिटी ये होता है। अब उसमें जो सामान जहेज़ है, यानी कमरे का सामान, बेड, सोफ़े, अलमारियाँ, फ्रिज, एसी, बर्तन वगैरह, ये सारा कुछ लड़का अरेंज करता है। और फिर उसके बाद अगर वो शादी नहीं चलती तो लड़की आ जाती है और वो दावा कर देती है सामान जहेज़ का। तो वो जब सामान जहेज़ का दावा करती है लड़की, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, तो लड़का आ जाता है, वो कहता है वकील साहब दा सामान खोटोल माँ वरता कड़ा है, वो वादा पटैम दा चिकम सामान दा अच दा जिनकी यादई सामान जहेज दा हर शह दा बेड पलंग दा संदूकुना दा कपड़े दा अलमारी दा फ्रिज दा हर शह दा बोजी दा शमसी दा बैटरियां दा हर शह माँ पल कड़ी हो। इसने घर से कुछ नहीं लाया था, ये सब कुछ मैंने खुद खरीदा था, तो अब ये क्यों मांग रही है? तो नहीं मांग सकती, अगर तलाक लेना चाहती है तो ले ले, लेकिन ये समान अदालत से नहीं मांग सकती। तो इस पे कानून बड़ा वाजे है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स की बहुत सारी जजमेंट्स हैं कि अगर कोई चीज जो शादी के वक्त लड़की को खरीद कर दी जाए, लड़के की तरफ से शादी के वक्त कोई चीज लड़की को खरीद के दी जाए, जैसा कि सामान जहेज का हमने जिक्र किया, सामान जहेज लड़के ने खरीदा और लड़की को दिया, अब वो लड़की तो अब अगर तलाक होती है वो तनसीख मांगती है और उस तनसीख में वो साबित करती है कि उसके पास कोई ग्राउंड मौजूद है, यानी सिर्फ तनसीख ऐसी तनसीख नहीं कि बगैर किसी वजह के, उसके पास वजूहात मौजूद हैं जो वजूहात मैं इस प्रोग्राम में पहले बयान कर चुका हूँ, और इनमें से किसी एक वजह की बुनियाद पे वो अगर तनसीख तलब करती है तो कानून कहता है कि वो सारा सामान जो शादी के वक्त उसको बतौर तोहफा हिबा दिया गया था या उसको खरीद कर दिया गया था, वो सारा उस लड़की की मलकियत समझा जाएगा, चाहे वो लड़के ने खुद ही क्यों ना खरीदा हो। अगर वो सामान जहेज लड़के ने खरीदा है फिर भी लड़की को दिया जाएगा। इस पर बहुत सारे आजकल फैसले ऐसे होते हैं कि सामान लड़के ने खरीदा होता है फिर भी अदालत वो सर लड़के का सामान उठा के लड़की को दे देती है, लेकिन बशर्ते ये कि लड़की ये साबित करे कि उसने जो तलाक लेना चाह रही है वो अदालत से उसमें उसके पास वजूहात हैं जो मैं बयान कर चुका हूँ, खर्चा नहीं देता, मारता है ना मर्द है, जुल्म करता है, सज़ा हो गई है, गायब है, ये सारी वजूहात उसमें मैंने जो बयान की। तो ये वो सूरतें हैं जिनमें आपका सामान भी अगर लड़के ने भी खरीदा है, लड़की ने खरीदा है फिर तो उसका है ही है, अगर लड़के ने भी खरीदा तब भी लड़की का हो जाएगा। इसके अलावा जो हक महर है वो फिर आपने अदा करना होता है जितना आपने लिखा हुआ है, वो अदालत आपको कह सकती है, खर्चा वगैरह तमाम दर्द दिलवाने का कह सकती है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फर्क, तनसीख और खुला में फर्क, इसको समझने की जरूरत है, इसको समझते हैं। जो तनसीख और खुला में जो बुनियादी फर्क है,

अच्छा, तो तनसीख और खुला में जो बुनियादी फ़र्क है उस पर हम पहले बात करते हैं कि तनसीख के आपके पास ग्राउंड्स होते हैं जो मैं बयान कर चुका हूँ, और खुला जो है वो लड़की के पास कोई वजह नहीं होती और बग़ैर किसी वजह के वो खुला ले लेती है, वो कहती है मुझे खुला चाहिए। तो जब कोई लड़की बग़ैर किसी वजह के खुला लेना चाहती है तो बमुताबे के कानून उसको हक महर वापस करना होता है, उसको वो तमाम तर सामान अपने राइट्स खर्चा नान और नफका सब कुछ छोड़ना होता है। यानी अगर आप बग़ैर, वो कहती है मुझे इस लड़की की शक्ल नहीं पसंद, तो ऐसी सूरत में अदालत कहती है कि आप सब कुछ छोड़ दें, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे अदालत आपको कुछ भी नहीं दिलवाती, अदालत कहती है ठीक है हम आपको खुला दे देते हैं लेकिन आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, यू वुड नॉट गेट एनी थिंग जो आप क्लेम कर रही हैं आपको बाकी तमाम चल। तो औरत वो सब कुछ छोड़ देती है, खुला उसको अदालत की तरफ से मिल जाती है। अब ये बात मैं बारहा अपने प्रोग्राम्स में समझा चुका हूँ, लेकिन आज इससे मुख्तलिफ बात इसमें क्या है, वो ये है कि अक्सर ये होता था कि जब नीचे कोई औरत तनसीख का दावा करती थी तो और वो उसको साबित नहीं कर पाती थी तो अदालत क्या करती थी, फैमिली कोर्ट, वो उसके तनसीख के दावे को खुला में तब्दील करके उसको तलाक दिलवा देती थी, लेकिन सामान जहेज वगैरह उसको बाकी सामान कुछ भी नहीं मिलता था। तो इस तरह के मसाइल पैदा हुए, बात सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बुनियाद रखी, ये इस अमर को बावर करवाया कि अगर एक औरत तनसीख का दावा कर रही है तो अदालत उसको अपने तई खुद से खुला में कन्वर्ट नहीं कर सकती और उसके हकूक से उसको महरूम नहीं कर सकती। यानी अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो तनसीख के दावे को अपनी मर्जी से खुला में कन्वर्ट कर दे, अनलेस के उसमें लड़की की मर्जी शामिल ना हो। लड़की कहती है कि ठीक है मुझे बस खुला दिलवा दे, फिर तो वेल एंड गुड। लड़की के बयान के बगैर, उसकी मर्जी के बगैर उसके तनसीख के दावे को खुला में कन्वर्ट नहीं किया जाता। ये पहला बुनियादी असूल सुप्रीम कोर्ट ने बयान किया। एक दूसरा बुनियादी असूल, दूसरा बुनियादी असूल जो बयान किया वो ये किया कि जो नान और नफका है इसको आप रुखसती से नहीं जोड़ सकते। यानी अगर आपने किसी लड़की से निकाह कर लिया है और वो लड़की अपने माँ बाप के घर बैठी हुई है, सिर्फ निकाह हुआ है रुखसती नहीं हुई, हमारे इलाके में ऐसे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि लोग निकाह कर लेते हैं रुखसती फिर बाद में होती है ना, तो जब आपने निकाह कर लिया तो शरी तौर पे वो खातून आपकी जिम्मेदारी हो गई। अब चाहे आप उसको अपनी रुखसती करके अपने घर ले आए हैं या नहीं ले आए, लेकिन अब आपकी वो जोजा मोहतरमा है और शरी तमाम दर पाबंदियाँ आप पे और उस पे आयद हो गई हैं। तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने इस अमर को भी वाज़े किया कि अगर रुखसती नहीं भी हुई तब भी अगर कोई लड़की निकाह में बैठी हुई है तो ऐसी सूरत में आप कानूनन उसके वालिदैन के घर में वो बैठी हुई है उसको उसका खर्चा नानो नफका देने के पाबंद और जिम्मेदार हैं अगर वो क्लेम करती है, क्योंकि रुखसती आपकी वजह से डिले हो गई है। वो तो तैयार बैठी आप उसको ले जाएं, वो तो कहती है मुझे ले जाओ अपने घर, अक्सर लड़के की तरफ से ये चीज़ डिले होती है। तो यहाँ पे कानून ये कहता है कि जी आपकी वजह से अगर रुखसती में ताखीर है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर लड़की माँ बाप के घर ही क्यों ना बैठी हो आप उसको तमाम खर्चा नानो नफका अदा करेंगे।

अच्छा, इसके साथ साथ एक और अमर जो बड़ा वाज़े अमर है और बड़ी एक अच्छी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसके ऊपर उसके हम ड्रॉबैक्स पे भी बात कर सकते हैं, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयों पे बात कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ बड़ी बावर करवाई और लिखा कि अब नाफरमान बीवी जैसे अलकाबात माजी का किस्सा बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जो माशरे में बरसों से जुड़ी सोच की जड़ें हिला देगा। ये जो एक फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा, और ये एक केस था डॉक्टर समीना हनीफ खान बनाम वकास खान, PLD 2026 सुप्रीम कोर्ट 91। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 नुकात रखे खानदानी केस के हवाले से, 5 नुकात को सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया, और मैं अभी आपको वो एक एक नुकात जो नुक्ता जो है वो तफसीलन पढ़ के बताऊंगा, जिससे बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी कि ये कैसे और किस तरह से ये फैमिली का निज़ाम चलाया जाता है।

इसमें जो पहला बुनियादी नुक्ता सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया वो मैं पहले बयान कर चुका हूं कि जबरदस्ती की खुलाब नहीं चलेगी। अगर फैमिली कोर्ट्स खवातीन के दावा तनसीख निकाह डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को खुद ही खुला में तब्दील बदल देती थी, जिसका नुकसान ये होता था कि औरत को अपना हक मेहर और जेवर वापस करना पड़ता था, जो मैं आपको बयान कर चुका हूं। अदालत औरत की मर्जी रजामंदी के बगैर किसी केस को खुला में तब्दील नहीं कर सकती। अगर शोहर ने जुल्म किया है या दूसरी शादी कानून के खिलाफ की है तो निकाह खत्म होगा, खुला नहीं, और औरत अपना पूरा मेहर, प्लाट, सोना रखने की हकदार होगी। ये बड़ा अहम नुक्ता सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बयान किया, जिसमें मैं तफसीलन आपको समझा चुका हूँ पहले नुक्ते पे। दूसरा नुक्ता, नाफरमान बीवी जैसे अल्फाज पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी। अब ये नहीं है कि एक बीवी है नाफरमान और आप उसके लिए नाफरमान वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं, लेकिन बगैर किसी सबूत के, बगैर साबित किए सिर्फ नाफरमान बीवी कह देना ये काफी नहीं है। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारे माशरे और अदालतों में खवातीन के लिए नाफरमान, डिस ओबीडियंट या खुद साख्ता मफरूर, सेल्फ डिजर्टिंग लेडी वो ऐसी खातून, खुद साख्ता मफरूर ऐसी खातून जिसको सिर्फ अपना आप नजर आता है, उसको ना अपना शोहर नजर आता है ना अपने बच्चे नजर आते हैं, वो सिर्फ अपने आप पे तवज्जो देती है, उसको बाकी अपने खानदान उससे कोई भी गर्ज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे खवातीन के लिए। अदालत के इस पे रिमार्क्स यह है कि जी, जबान सोच की अकासी करती है। अदालतों को ऐसे अलकाबात से गरेज करना चाहिए जो खवातीन की तजलील करें और उन्हें एक मखसूस इखलाकी पैमाने पर रखें। औरत की इज्जत नफ्स और खुद मुख्तियारी मुकदम है। लेकिन यहां पे एक और बात भी हम डिस्कस करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के बारे में बड़ी अच्छी बात की कि आप खवातीन के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें कि वो यानी नाफरमान है, वो बदकिरदार है, वो गलत है, वो गंदी है, झगड़ालू। गलत अल्फाज आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने दावाजात में इस्तेमाल ना करें। लेकिन अब इससे हम ये आंसर भी ले सकते हैं कि जिस तरह खवातीन आती हैं अदालतों में और वो भी बहुत बाज़ दफ़ा अपने शोहरों के बारे में गलत अलकाबात का इस्तेमाल करती हैं, शराबी है, जानी है, जानवर है, घटिया है, बेगैरत है, गधा है, मैंने ये सारे अल्फाज पढ़े हुए हैं दावों में, ना मर्द है, मतलब ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। ये तो नॉर्मल अल्फाज हैं जो मैंने लिखा कि मेरा शोहर गधा है, मैंने पढ़ा एक दावे में लिखा हुआ था कि मेरा शोहर गधा है, गधा। ये किसने लिखा था, मेरा शोहर वैशी जानवर है, तशद्दुद करता है, ठीक है, मारता है, पीटता है, शराबी है, जानी है, जुआरी है। एक ने लिखा हुआ था मेरा शोहर बच्चाबाज है। तो ये इस तरह के अलकाबात अगर लड़की के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, तो अगर आप, एक तो है कि अगर एक खातून ऐसी है तो फिर तो आप इस्तेमाल करते हक बजाने में आप साबित कर सकते हैं। अगर आपका मर्द ऐसा है तो फिर तो आप अगर इस्तेमाल करते हैं, साबित कर सकते हैं तो हक बजाने में। लेकिन सिर्फ अपना केस को मजबूत करने के लिए और शोहर से जो है ना वो चीज़ें तलाक लेके निकलवाने के लिए इस तरह के अल्फाज शोहर के लिए इस्तेमाल करना, ये भी इंतहाई नामुनासिब है।

चीज़ जो बड़ी अहम है जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे वो अगला नुक्ता है इसका कि जी कैरियर और तालीम ये नाफरमानी नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि अगर कोई खातून अपने कैरियर या बहरून मुल्क तालीम के लिए जाना चाहती है तो ऐसे शोहर की नाफरमानी करार नहीं दिया जा सकता, इसकी जाती खुद मुख्तियारी है, कोई जुर्म या बदतमीजी नहीं। अब ये एक और बहुत बड़ा मसला जो अक्सर अदालतों के सामने आता है, खवातीन आती हैं अदालत, दावा दायर करती हैं और उसमें कहती हैं कि जी मुझे खुला इसलिए चाहिए कि मेरा शोहर मुझे पढ़ने नहीं देता, मुझे नौकरी नहीं करने देता। हमारे शहरों में मैक्सिमम यही होता है, और जो बड़े शहर हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वगैरह, वहाँ पे फिर एक स्टेप आगे की बात होती है कि जी मेरा शोहर मुझे बाहर मुल्क तालीम के लिए नहीं जाने देता, मैं बाहर मुल्क तालीम के लिए जाना चाहती हूँ और मेरा शोहर मुझे बाहर मुल्क तालीम के लिए नहीं जाने देता। अब बाहर मुल्क तालीम के लिए जाना किसी लड़की का अकेले, अब वो कितना ठीक है गलत है उस पर हम यहाँ बात नहीं कर रहे, हम एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिस्कस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई खातून बाहर मुल्क जाना चाहती है अपनी मर्जी से पढ़ने के लिए तो ये उसकी, अगर वो शोहर की बात नहीं मान रही या अगर वो घर से बाहर निकलना चाहती है जॉब के लिए तो ये

इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, तो उसके साथ जनाब दो फरिश्तों को भी बिठा दिया है, एक आपके अच्छे अमाल को लिखने वाला, एक आपके बुरे अमाल को लिखने वाला। तो जनाब ये जिंदगी अल्लाह ताला की अता करदा जिंदगी जितनी भी है, कोई 10 साल जीता है, कोई 20 साल जीता है, कोई 30 साल, कोई 50, कोई 100 साल जीता है मैक्सिमम। तो आपकी जिंदगी बड़ी कीमती है और आपका इस दुनिया के अंदर आना एवं नहीं है, फजूल सा नहीं है कि हम आप कुछ वक्त गुजारी के लिए नहीं है। इस बात की अहमियत कि इस दुनिया में आना आपका कितना अहम है, आपके ऊपर निगरानी है जो फरिश्तों की सूरत में है, और फरिश्ते निगरानी कर रहे हैं और आपके एक एक अमल को लिख रहे हैं, और एक एक अमल को लिखने का मकसद ये है कि इस दुनिया के अंदर आप अच्छाई करें या बुराई करें अपने हाथ से, अपने जुबान से, ठीक है जनाब, वो बिल्कुल भी लिखी जा रही है और उसका आपको जवाब दे होना है। जी जनाब, जवाब दे। एक तो आप दुनिया के अंदर कुछ अमाल इंसान के ऐसे होते हैं, कुछ गुनाहों की सजा जो है वो इंसान को इसी दुनिया के अंदर मिल जाती है। बाज लोगों को आप इस दुनिया के अंदर मुश्किल हालात में जब देखते हैं तो फिर यही कहते हैं कि यार ये देखो इसको अपने अमाल किए की सज़ा मिल गई है। ठीक है जनाब, अक्सर हम ये लफ्ज़ बोलते हैं कि यार देखो इसको किए की सज़ा मिल गई है। तो बिल्कुल इसी तरीके से होता है, कुछ लोगों को अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर भी उनके अमाल की सज़ा दे देते हैं और कुछ को जो है एक लंबी रस्सी देते हैं, ढील देते हैं, और क़यामत के दिन बहरहाल उनको जवाब दे होना है अपने हर हरकत और सकनात का, और जवाब दे होना है, अल्लाह ताला को जवाब देना है। और जवाब जब नहीं दे पाएंगे और आपके अमाल को जब तोला जाएगा, एक बात अक्सर हम करते हैं, अक्सर हम गिनती करते हैं अपने अमाल की, नमाजों की गिनती, कितनी नमाजें पढ़ ली हैं भाई, कितनी पढ़ ली हैं, 5 पढ़ ली हैं, 4 पढ़ी हैं के 3 पढ़ी हैं। देखिए आपका कुरान, हमारा कुरान कहीं पर भी हमें नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देता है। कहीं से भी आप साबित नहीं कर सकते कि आपका रब नमाज पढ़ने का आपको कह रहा है, बल्कि वाज़े तौर पर कुरान पाक के अंदर अल्फाज हैं नमाज को पढ़ने के नहीं, नमाज को कायम करने के हैं। ठीक है जनाब, नमाज जो हमारा फरीजा है ये पढ़ने की चीज नहीं। यही वजह है कि आजकल के दौर में हम नमाज को पढ़ते हैं, कायम नहीं करते हैं। ठीक है जनाब, और जिस दिन से आप लोगों ने, हम लोगों ने, तुम सब ने नमाज को कायम करना शुरू कर दिया, खुशू खुजू के साथ करना शुरू कर दिया, सरखम कर दिया, जिस वक्त नमाज पढ़ते हैं एक एक लफ्ज़ की अदायगी हमारे कानों में गूंज रही हो कि मैं सजदे में जा रहा हूँ, क़याम में जा रहा हूँ, रुकू में जा रहा हूँ, तो क्या मैं अल्फाज बोल रहा हूँ, मेरी तस्बीह क्या है और इस तस्बीह का मतलब क्या है, तो वो कहलाएगा नमाज का कायम होना। नमाज का पढ़ना यही है के नमाज पढ़ने के बावजूद भी गुनाहों से बाज ना आना, नमाज पढ़ने की वजह से होता है कि हम नमाज को पढ़ते हैं। जिस दिन से हम नमाज को कायम करना शुरू कर देंगे तो वो जो हुक्म है कि नमाज बेहयाई से रोकती है, बिल्कुल जिस दिन से आपकी नमाज कायम करदा नमाज आपको बुराई से रोकना शुरू कर दे, समझ जाएं कि अब आपने नमाज को कायम करना शुरू कर दिया है जो आपके रब का हुक्म।

जनाब, इस दुनिया में आप आए हैं तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, और कुछ लोग आपको आपके साथ बुराई करते हैं, आपके लिए मसाइल पैदा करते हैं, और कुछ लोग जो है वो आपके लिए रास्ते बनाते हैं। तो कहते हैं कि जनाब, जो कोई आपका बुरा करे, आपके लिए बुरा सोचे और अपने बुरे अमल में आपके लिए मसरूफ रहे, आपको यकीन होना चाहिए और ये मामला अपने रब के सबूर कर दीजिए कि आपके रब को ना नींद आती है और ना ही आपके रब को ऊंग आती है।

जी जनाब, और चौथी प्रोडक्ट है हमारी जो आप लोगों के लिए जो कि मोटापे से निजात का जो है एक इलाज है हमारा, जो कि कुदरती जड़ी बूटियों से यानी कि कुदरती अज्जा से आपकी एक्स्ट्रा चर्बी को पिघलाने की हमारी ये हर्बल फार्मूला फक्की है। केसन वेट कम पेट कम। अगर आपको लगता है कि जनाब माशरे में आपको मोटापे की नज़र से देखा जाता है या आपकी अपनी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल है मोटापे की वजह से, तो ज़रूर इस प्रोडक्ट को घर लाइएगा। केसन वेट कम पेट कम। आप इस वक्त तीनों बड़े अजला के अंदर टांग टीर और पहाड़पुर में मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो यकीनी बात है कि जिस प्रोडक्ट का हम जिक्र करते हैं वो प्रोडक्ट आपके इलाके में मौजूद भी होते हैं। तो टांग के अंदर भी सारे प्रोडक्ट मौजूद हैं और हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं टांग के अंदर मंसूर जनरल स्टोर सदाम प्लाजा। इसके अलावा डेर इस्माइल खान में हमारी अपना सेटअप है केसन शॉप के नाम से, केसन आउटलेट कशफ ट्रेडर्स के नाम से है। यहाँ से आप हमारी प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, दुकानदार समेत तमाम लोग यहाँ से होलसेल रेट के ऊपर प्रोडक्ट केसन के हासिल कर सकते हैं। पहाड़पुर में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं अवेस ट्रेडर राहतगी एजेंसी के बिल्कुल सामने, तो आप उनसे भी हमारे प्रोडक्ट होलसेल रेट के ऊपर हासिल कर सकते हैं या पर अपनी दुकानों के ऊपर बेचने के लिए भी यहाँ से होलसेल रेट पर आप हासिल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, किसी भी रहनुमाई की सूरत में आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। और नंबर हमारा क्या है, अपना कलम और कागज उठा लीजिए, नोट कीजिए हमारा हेल्पलाइन नंबर 03449363666 03446।

0: ब्राइटनिंग लवली फेस वॉश है केसन
1: अला
0: अचो पाकिस्तान का।
1: लैला।
0: इसके अलावा अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप केसन का गो पिंपल फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग चारकोल को पसंद करते हैं, गर्मी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल इस्तेमाल किया जाता है चारकोल, तो कोयले से बना हुआ ये फेस वॉश होता है और हमारा ये स्क्रब के साथ मौजूद है, 2-in-1 है, यानी कि ये स्क्रब का काम भी करता है और फेस वॉश का काम भी करता है। तो आप चारकोल स्क्रब फेस वॉश भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ग्लूटा वाइट का फेस वॉश है, यानी कि वाइटनिंग के जो ख्वाहिशमंद लोग हैं वो प्योर वाइटनिंग लवली फेस वॉश या फिर ग्लूटा वाइट फेस वॉश का इंतखाब करें। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर केसन गो पिंपल का, और साथ में अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वैसे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को कोई भी फेस वॉश जो होता है वो अच्छे तरीके से पिक करता है, ठीक है जनाब। चाहे आप हमारा लवली फेस वॉश इस्तेमाल करें या आप हमारा गो पिंपल इस्तेमाल करें या फिर आप हमारा चारकोल फेस वॉश इस्तेमाल करें, ये सभी आपके वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को निकालते हैं। बेसिकली साबुन जो होते हैं वो व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स के ऊपर उनका इतना काम नहीं होता क्योंकि उनकी डीप क्लिनजिंग नहीं होती है, ठीक है जनाब। चूंकि फेस वॉश की डीप क्लिनजिंग होती है, गहराई में जाकर ये आपकी स्किन को साफ कर रहा होता है, तो ऐसे तमाम अफराद लड़के और लड़कियां जिनको ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स का इशू रहता है, तो वो केसन का कोई भी फेस वॉश लेंगे तो उनका ये मसला इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हल हो जाएगा।

जी जनाब, ये फेस वॉश हमारे चार किस्म के आप लोगों के पास मौजूद हैं, और अगर कोई यूज़र मौजूद हैं हमारे जो इन प्रोडक्ट्स में से, हमारे इन फेस वॉशेस में से आप अगर इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ज़रूर अपना रिव्यू, अपना फीडबैक जो है वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। इसके अलावा ये तो चार किस्म के हमारे फेस वॉश हैं, इसके अलावा एक अर्जेंट फेशियल भी है हमारा, जो कि एमरजेंसी वाइटनिंग के लिए और इमरजेंसी तैयारी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, केसन अर्जेंट फेशियल, जो कि वाइटनिंग मैजिक के नाम से है। इसके अलावा जो हमारे सोप्स हैं, डिफरेंट किस्म के सोप, मैक्सिमम लोग हमारे सोप्स का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा, वैसे तो तमाम किस्म के जो हमारे सोप हैं उनके ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं, लेकिन स्पेशली अगर मैं बात करूँ जो कि मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो केसन का मिल्की सोप है, गोट मिल्क सोप है। ठीक है जनाब, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा केसन का जो ज़ाफ़रानी साबन है, उसके बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं, और ये स्किन वाइटनिंग के लिए और स्किन क्लैरिटी के लिए, ये भी दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए, ये भी गो पिंपल की तरह, ये भी एक्नी को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। एक्नी के लिए यूँ समझिए कि हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, एक गो पिंपल सोप है और दूसरा जो है ज़ाफ़रानी साबन है। गो पिंपल के अंदर जो है वो नियासिनमाइड एंड सैलिसिलिक एसिड के साथ, टी ट्री और नीम के साथ हम फाइट करते हैं एक्नी के साथ, और जो ज़ाफ़रानी साबन है उसमें जो है संदल और हल्दी, ये दो चीज़ें जो कि कुदरती अज्जा हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एक्नी को ख़त्म करने के लिए, एक्नी के निशानात को ख़त्म करने के लिए। तो ये दोनों प्रोडक्ट, ज़ाफ़रानी साबन और गो पिंपल, ये दोनों एक्नी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि इन दोनों में से किसने आपकी स्किन को ज़्यादा सूट किया है, और किसने आपके एक्नी के प्रॉब्लम को और आपकी स्किन पर मौजूद आयल को बैलेंस किया।

जनाब, इसके अलावा ये तो दो साबुन है, उसके बाद पांच साबुन और हमारे हैं जैसे कि राइस शाइन, और ऐसे लोग जिनको स्किन को जो अपनी स्किन को चमकता हुआ देखना चाहते हैं, सो चमक के साथ साथ वाइटनिंग लाने में राइस का बड़ा किरदार होता है। और केसन का जो राइस साबुन है ना, वो सिंथेटिक केमिकल नहीं है, ठीक है जनाब, बिल्कुल जी प्योर नेचुरल जो है, जो चावल होता है उसका जो मिल्क होता है उससे बना हुआ हमारा ये सोप है, जिसको हम कहते हैं राइस शाइन सोप। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन ब्राइटनिंग और स्किन को स्किन के ऊपर शाइन लाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कोजिक एसिड सोप हमारा मौजूद है, यानी कि छाइयों को खत्म करने वाला अलग से साबुन है।

जो कि कोजिक एसिड प्लस चुकंदर से बना हुआ है। आप इसका इस्तेमाल करके अपने चेहरे पर बगैर किसी करीम की मदद के आप कोजिक एसिड से अपने चेहरे को छाइयों से साफ कर सकते हैं। गुलाबी कलर का ये साबुन है, हमारा पिंक कलर का साबुन होता है, ठीक है। अब इसके अलावा उपटन का सोप है, जो कि स्पेशली हम कहते हैं कि गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जनाब अक्सर जब आप बाहर निकलते हैं तो आपकी स्किन जो होती है वो झुलस जाती है, सड़ जाती है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए उपटन साबुन का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपकी स्किन फिर से खूबसूरती की तरफ रिस्टोर हो जाती है। एंड सोप नंबर 7 हमारा ग्लूटावाइट का सोप है। ग्लूटावाइट की उस दिन भी मैंने आपको ब्रीफली बात की थी कि केसन वाहिद कंपनी है जिसके पास ग्लूटाथियोन, अगर आप ग्लूटाथियोन फार्मूले को पसंद करते हैं और आप ये चाहते हैं कि भाई आजकल के दौर का यही फार्मूला है, लोग फेस वाश खरीदते हैं तो भी ग्लूटा का, साबुन खरीदते हैं तो भी ग्लूटा का, और क्रीम खरीदते हैं तो भी ग्लूटा की, तो आपने अगर ग्लूटाथियोन का असल वाला मज़ा लेना है और देखना है कि कितने कम वक्त में आपका सांवलापन ख़त्म होता है, कितने कम वक्त में आपकी स्किन ब्राइट होती है, क्लैरिटी होती है, तो आपने एक दफ़ा केसन की जो ग्लूटावाइट रेंज है यानी कि डे एंड नाइट क्रीम, ग्लूटावाइट सोप और ग्लूटावाइट फेस वाश को आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है।

जी जनाब, आप लोग हमें ज्वाइन भी करेंगे, एसएमएस कर सकते हैं, और इसी दौरान हम जो है मुहर्रम का महीना है और उस हवाले से एक सेगमेंट हमने स्टार्ट किया हुआ है वाक़े करबला को आपके सामने पेश करने का, और कुछ कुछ हिस्सा तो आपके साथ हमने शेयर किया है। आगे दिन है हमारे पास जो है, आज 5 मुहर्रम है तो 5 दिन और हैं, और आज हम कोशिश करेंगे कि 1 मुहर्रम से लेकर 5 मुहर्रम तक की जो वाकियात पेश आए काफ़िला हुसैनी के साथ, ठीक है जनाब, वो आपके सामने रखें। तब तक आप हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं, हमारे नंबर्स पर एसएमएस कर सकते हैं आप, हमारा नंबर 03449363366। मुझे कहते हैं खलील ताबी शमान, और इस वक्त आप डेर इस्माइल खान में ग्लोबल एफएम 91, टांक में रेडियो अमन और पहाड़पुर में रेडियो पैगाम 97.4 की लाइव फ्रिक्वेंसी के ऊपर केसन का प्रोग्राम बयक वक्त बरह

0: जी सर, मैंने कराम जैसे कि आप लोगों के सामने कल हमने वाकई करबला का कुछ हिस्सा जो आपके सामने रखा, जैसे कि हुकूमत की तरफ से उस वक्त की जो हुकूमत की जीत के पास होती है, हुकूमत चूँकि खिलाफत कैम हुकूमत कैम हो चुकी होती है यजीद की, तो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए वो लोग जो कि यजीद को हुक्मरान अमीर या अमीर मोमिनीन या खिलाफ खलीफा मानने से इनकार कर चुके थे, जिनमें चार बड़े नामों में से एक नाम हज़रत इमाम हुसैन के था, उनके ऊपर भरपूर सियासी और दबाव डाला उनके ऊपर कि किसी तरीके से ये लोग भी मान जाएं, स्पेशली हज़रत इमाम हुसैन मान जाएं, ताकि उसके बाद मुकम्मल तौर पर जो है यजीद अपनी हुकूमत का ऐलान कर सके, और उसके बाद अपना जो उसका जो भी मंशूर था, पैसा बनाने का मंशूर था या जो भी था, वो उसको अमली शक्ल देता। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन चट्टान की तरह डट के खड़े हो गए कि ये एक गलत फैसला है, ये एक गलत तरीक़ाकार जो है राइज होने लगा है कि खिलाफत से हम बादशाहत की तरफ जा रहे हैं, और ऐसा हरगिज़ हमारे होते हुए अहले बैत के होते हुए ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है। तो उसके बाद उन हज़रत इमाम हुसैन के ऊपर उस वक्त के गवर्नर्स की तरफ से जो है प्रेशर डाला गया, जैसे कि कल आपको बताया कि वलीद बिन उतबा उनको अपने गवर्नर हाउस में बुलाते हैं, लेकिन इमाम हुसैन उनकी बात नहीं मानते हैं और ये फैसला करते हैं कि अब मदीना में रहना हमारे लिए नुकसान का बायस बनेगा, मक्का में आ जाते हैं, और मक्का में 4 माह क़याम करने के बाद यहाँ पर भी वो देखते हैं कि हालात बिगड़ गए थे, और कुछ साजिशों का हज़रत इमाम हुसैन को पता चल गया था कि कुछ लोग जो है हुजाज के हाजियों के रूप में आकर वो उनके ऊपर कातिलाना हमला कर सकते हैं, कुछ साजिशें जो है उन तक पहुँच चुकी थी, तो वहाँ से भी हज़रत इमाम हुसैन जो है काफिला हुसैनी के साथ अपने 72 जान निसारों के साथ वहाँ से निकलते हैं।
1: रसूल शहजादा है रसूल।
0: जनाब, ये मुहर्रम के इब्तदाई दिन थे, और मुहर्रमुल हराम की ये इब्तदाई अयाम तारीख इंसानियत का वो दर्दनाक सामीन इकराम बाब है, जब हक व बातिल की फैसला कुन जंग के लिए करबला की तपती रेत पर खेमे नसब कर दिए गए
1: हैं।
0: इस अजीम दास्तान का जो आगाज है सामने, करबला पहुंचने से कुछ दिन कबल, यानी कि मुहर्रम अभी नहीं स्टार्ट हुआ होता कि इससे पहले ही आगाज हो चुका होता है, जब मकाम जो हसम, अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ तो माफी चाहूंगा, ये जगह का नाम है जो हिसम है या जो हसम है। अच्छा सामिन किराम, हज़रत इमाम हुसैन जब काफला अपने काफला को लेकर जिसमें 72 लोग थे, जिसके अंदर खवातीन भी थी अहले बैत की, जिसके अंदर बच्चे भी थे, असहाबी थे, वो अपनी जो यानी के चूंकि खतूत लिखे गए थे कूफा की तरफ से कि आप यहाँ पर तशरीफ़ ले आए, हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ खड़े रहेंगे, तो हज़रत इमाम हुसैन वहाँ से निकल पड़े थे। तो हज़रत इमाम हुसैन मेन शहरा के ऊपर, क्योंकि उनका काफिला था तो वो आसान आराम से चलते हुए जो है कूफा की तरफ आ रहे थे, जैसे यजीद को खबर पहुंचती है तो यजीद जो है हुरबिन यजीद के जरिए, हुर जो उस वक्त का कमांडर था, उसे 1,000 फौजियों का लश्कर देकर भेजते हैं कि भाई जाएं, हमें खबर मिल चुकी है कि इमाम हुसैन कूफा की तरफ आ रहे हैं। तो यजीद के अहकामात क्या थे हुर बिन रिहाई को, क्या उस हुर बिन यजीद रिहाई को 1,000 का मुसल्ला जो है मुसल्ला लश्कर था, ठीक है जनाब, भेजा हज़रत इमाम हुसैन को रोकने के लिए। तो ये जो जो हिसम है या जो हसम है, ये जो मकाम है, ये जो कूफा की मेन शहरा है, जो मेन रास्ता है उसी के ऊपर ये आता है, ठीक है जनाब। तो वहाँ पर ये अहकाम क्या दिए गए थे, आप ज़रा इस बात को, बहुत सारे लोगों को इसकी तफसील का पता नहीं होता कि इमाम हुसैन काफले के साथ मेन शहरा जो कूफा की थी उसके ऊपर आ रहे थे, यजीद को जैसे पता चल गया तो यजीद ने एक हुक्म दिया हुर बिन यजीद को, रियाई को, कि आपने क्या करना है, इमाम हुसैन को वहाँ पर रोकना है, और रोकने के बाद जो है क्या करना है, उनको आगे नहीं आने देना, ना ही उनको कूफा की तरफ आने देना है और ना ही उनको वापस मदीने जाने देना है।
1: जाते मैदान में
0: ये वाकया जैसे जुहसम के मुकाम पर 1000 मुसल्ला और प्यासा लश्कर नवासे रसूल के सामने आते हैं, तो इमाम हुसैन का अजीम इखलाक क्या था कि आपने दुश्मन के प्यासे लश्कर को ना सिर्फ खुद पास जाके पानी पिलाया बल्कि उनके घोड़ों को भी सैराब किया। अब यहाँ पर सोचने की बात है, देखिए इमाम हुसैन के पास इतना पानी मशकों में था कि अगर वो इस वक्त, अब देखिए 7 मुहर्रम से क्या होगा, अभी 4 मुहर्रम से उनके पास पानी खत्म हो जाता है, थोड़ा सा रह जाता है काफले के पास, और 4 मुहर्रम से ही दरिया फिरात के किनारे जो है पहरा आ जाता है कि भाई किसी ने भी पानी नहीं लेना। थोड़ा बहुत हजरत अलमदार अब्बास जो है लेके आते थे पानी बच्चों के लिए, लेकिन देखिए सोचने की बात है कि 1000 का लश्कर था और इमाम हुसैन ने उनको पानी पिलाया, ना सिर्फ लोगों को बल्कि जो घोड़े थे उनको भी सैराब किया। तो खुद सोचिए कि हजरत इमाम हुसैन के पास मशकों में कितना पानी था, अगर वो उनको ना पिलाते या उनकी इस तरह से इकराम ना करते तो उनको अगले 10-15 दिन जो है पानी की कमी महसूस नहीं होनी थी कर्बला के अंदर। लेकिन उन्होंने क्या, अपने नाना के अजीम इखलाक के मालिक थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तरबियत तो कैसे उनसे हद के हो सकती थी। चाहे वो दुश्मन था उसने रास्ता रोक लिया था, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि पहले इनको पानी पिला। कहते हैं कि गर्द धूल उठती हुई सामने से एक नजर आई और हजरत इमाम हुसैन ने जब देखा कि ये तो प्यासे हैं, गर्मी की शिद्दत है, तो उन्होंने उनको पानी पेश किया और उनको सैराब कराया। जनाब यहाँ पर पानी पीने के बाद हुर ने कहा कि इमाम हुसैन हमें हुक्म है कि हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते, हुक्म है कि ना आप आगे जा सकते हैं, यानी कि ना कूफा की तरफ आप जाएंगे ना ही आप वापस मदीना की तरफ जाएंगे, आप कोई और रास्ता लेंगे। अब ये नहीं है कि वो जहाँ से आ रहे थे, ये तो मेन शहरा थी ना, यहाँ से तो लोग आते जाते थे, अगर इधर ही करबला हो जाती यानी कि इधर ही रुक जाते तो लोग तो उनका जो मंसूबा था जो यजीद की फौज का था कि उन्होंने कहा कि किसी दूर इराके में जा कर रोकना है इनके काफले को, मेन शहरा के ऊपर नहीं रोकना। तो वो शहरा से तकरीबन तारीफ में लिखा हुआ है कि जो मेन शहरा थी जिसके ऊपर ये काफला आ रहा था इमाम हुसैन का, 1-2 दिन का फासले के बाद जो हुर था उनको लेकर गया। ठीक है जनाब, यानी कि ये मुहर्रम से पहले की बात है, ये जोहिसम के मकाम पर जब इमाम हुसैन काफला के साथ पहुंचते हैं तो 2 मुहर्रम को तो हजरत इमाम हुसैन जो है वहां पर पहुंचते हैं जिसका जिस जगह का नाम वो डिक्लेयर करते हैं कि ये करबला है, लेकिन जिस रास्ते से वो आ रहे थे यहाँ से बिल्कुल हटा कर जो है जो हुर था वो उनको दूर लेकर गया, क्योंकि उसके पास अहकाम थे कि इमाम हुसैन के काफले को उस जगह लेके जाना है जहां पर कोई साया ना हो, जहां पर पानी दूर दूर तक ना हो और जहां पर कोई आबादी भी ना हो। ये तो हो सकता था जिस मेन शहरा के ऊपर आपका काफिला आ रहा था, हो सकता था वहां पर कोई आबादी भी हो, वहां पर आता जाते लोग पानी भी दे सकते थे खाने पीने का, क्योंकि नवासे रसूल थे ना। तो उन्होंने प्लानिंग इस तरह की थी कि किसी तरीके से इमाम हुसैन तक किसी भी बंदे की नजदीकी आबादी की कोई भी अप्रोच ना हो सके। उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ हुर को ये बता के भेजा कि वहां ले जाना इमाम हुसैन के काफले को, मेन शहरा से हटकर इतना दूर ले जाना कि जहां पर कोई छांव ना हो, कोई दरख्त ना हो और दूर दूर तक कोई खाने पीने का इंतजाम ना हो सके, जहां पर पानी भी ना मिल सके। ठीक है ना, जब इस तरह का हजरत इमाम हुसैन ने सुना कि भाई ये इंस्ट्रक्शन है, तो इमाम हुसैन ने कुछ रिवायात में है कि लिखा है कि अगर आपको मेरा आना इस तरीके से पसंद नहीं है तो मैं वापस मदीना चला जाता हूँ। ठीक है जनाब, लेकिन हुर ने कहा माजरत हमें ये हुक्म भी नहीं है कि हम आपको वापस जाने दें, आपको हम किसी तीसरी जगह पर ले जाएंगे। तो कहते हैं इमाम हुसैन फिर अपनी मर्जी से आगे चले। ठीक है, और तकरीबन इतना फासला था, तारीख में लिखा है 1-2 दिन पैदल चलने का फासला। ठीक है जनाब, यानी कि मुहर्रम से तकरीबन 3 दिन पहले वो इस मकाम पर पहुंचे होंगे, 2 दिन पहले, कि इतने फासले पर दूर इलाके में जो कि सहरा का इलाका, तपती रेत, कहीं पर पानी खाने कोई आबादी साथ में नहीं थी। तो इमाम हुसैन ने तारीख में लिखा है कि हुर से कहा कि देखो मैं खुद नहीं आया हूँ और ना मैं अपनी मर्जी से आ रहा हूँ, ये देखो मेरे पास خطوط کے انبار لگے ہوئے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے وہ خطوط کے انبار دکھائے حر کو کہ حر یہ دیکھو مجھے ان لوگوں نے بلایا ہے، مجھے کوفہ کے لوگوں نے قسمیں دے کر یہ خط لکھ کر بلایا ہے اور میں ان کے کہنے کے اوپر ہی ان کی طرف آ رہا ہوں، لیکن حر نے کہا کہ میں ان چیزوں کو نہیں جانتا، میں ان باتوں کو نہیں مانتا، میں اپنے آقا کی بات مانوں گا، مجھے ابن زیاد کا جو حکم ہے، یزید کا جو حکم ہے، میں نے اس کی ہر صورت میں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، اور مجھے جو انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ آپ کو یہ دو راستے بھی ہم نہیں دے سکتے، اور ایسی جگہ پر آپ کو لے جائیں گے جہاں پر کوئی پانی نہیں ہوگا، جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، جہاں پر کھانے پینے کا راشن کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا، جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہوگی۔ تو امام حسین یہ سب سننے کے بعد شجاعت اور بہادری کے ساتھ چلے، آگے چلے، چلتے گئے، اور پھر آخر وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ رک جاتے ہیں، یہاں سے گھوڑا آگے نہیں جا رہا ہوتا، تو بہت زور لگانے کے بعد بھی گھوڑا آگے جب نہ چلا روایات میں ہے، تو پھر حضرت امام حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو کسی نے کہا کہ نینوا ہے، کسی نے کوئی اور نام بتایا، اور بالآخر ایک بزرگ وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس کو

0: भी फंसा।
1: जनाब, और ये बात सुनने के बाद इमाम हुसैन ने कहा कि बिल्कुल ये तो पेशन गोई मैंने सुनी हुई अपने नाना से, अपने बाप से, कि हमारी जो औलादे हैं उनको इसी मकाम के ऊपर कुर्बानी देनी होगी, तो वो बखुशी वहाँ पर उतर जाते हैं और अपने असहाब से कहते हैं कि बस इधर ही खैमे लगा।

0: अल्लाह।
1: जी जनाब, ये तो मुहर्रम का दिल खराश दिन था कि जब इमाम हुसैन के घोड़े ने कदम आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन ने इस जमीन का नाम पूछा तो जवाब मिला कि इसे करबला कहा जाता है। तो आपने फरमाया यहीं उतर जाओ, यही हमारे खेमे लगेंगे और यहीं हमारा खून बहाया
2: जाएगा।
1: कहते हैं ज़मीन कराम की ये सुन्नत था कि खेमों के अंदर से मौजूद सानिये जहरा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के दिल पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने बचपन से अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम और बाबा अली मुर्तज़ा से इस ज़मीन की पेशगोइयाँ सुन रखी थीं। आज वो वक्त उनकी आंखों के सामने आ चुका था। जब खैबे नसब हो रहे थे तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने खामों को सरपरस्ती संभाल ली। वो जानती थी कि आने वाले दिनों में इस ख़ानदान और इन मासूम बच्चों का वाह सहारा उन्हें ही बनना है।
2: शमा बुझ नहीं सकती ताहशर शहादत
1: की। समय कम 3 महरमुल हराम को सूरत हाल ने एक खौफनाक मोड़ जो है वो धार लिया। कूफे से उमर बिन साद 4,000 का भारी लश्कर लेकर करबला पहुंच गया और यजीदी फौज की सिपा सालारी उसने संभाल ली। खैमों का मुआसरा शुरू हो गया, यानी कि पहले एक लश्कर हुर बिन यजीद की सरबराही में मौजूद था, 1,000 फौजियों का लश्कर जो कि साजो सामान फौजी साजो सामान के साथ मौजूद थे, और उसके बाद 3 मुहर्रम को क्या होता है उमर बिन साद भी पहुंच जाते हैं जनाब, और ये लश्कर 4,000 पर मुसल्ला अफवाज पर मुश्तमिल ये लश्कर होता है। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, इस वक्त 5,000 की फौज 72 जान निसारों का पहरा दे रही है, उनका मुहासरा किए हुए है, खैमों का मुहासरा कर लिया है और एक बयाबान जगह के ऊपर ये पहुंच चुके हैं और यजीद के लश्कर पे लश्कर इस जगह पर पहुंच रहे हैं।

0: नायाब।
1: अच्छा, इससे एक दो दिन पहले जो हालत थी वो ये थी कि हुर सिपा सलार था, और ये वो वक्त था जब हुर जो काफले को यहाँ तक लाए थे पस से मंजर में चले गए थे, और उनके अंदर एक खामोश जंग शुरू हो गई थी। हुर जो है ना, एंड के ऊपर आप देखेंगे कि किस तरीके से वो हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं और फिर हज़रत इमाम हुसैन का साथ देते हैं आगे जाकर। तो उनके
0: करबला
1: अंदर एक जंग शुरू हो गई। हुर हैरान थे कि क्या ये उम्मत वाकई अपने नबी के नवासे का खून बहाने जा रही। यानी पहले तो हुर आए थे कि मामला तय हो जाएंगे, लेकिन जब ये देखा कि भाई 1,000 लश्कर के बाद आज फिर 4,000 का लश्कर आ गया, और आगे है कौन? नवासे रसूल, अहले बैत के खवातीन, बच्चे, और ये करने क्या जा रहे हैं। यानी कि हुर के दिल में बातें आना शुरू हो गई कि ये तो कुछ गड़बड़ होने वाली
0: तेरे सितम तेरी जफा कौन
1: जी।
0: गिनेगा।
1: जनाब, इन 3 दिनों की खामोशी ने हुर के जमीर को बेदार करना शुरू कर दिया था, जो बिलाखिर अशूरा की सुबह को, यानी कि 3-4 दिन ये जो गुजरते हैं, तो उनके अंदर जमीर जागना शुरू हो जाता है।
0: मैं भी
1: 4 और 5 मुहर्रम हराम, यानी कि जैसे कि आज 5 है, यानी कि अभी फौज इकट्ठी हो रही है, अभी कुछ दिनों का राशन, कुछ दिन का पानी जो है इस काफला के पास मौजूद है। इतने
0: मैं
1: ज्याद के सख्त खतूत आना शुरू हो गए, जैसे कि 4 और 5 मुहर्रम हो ही। जनाब ठीक है, जनाब अफवाज तो यजीद की पहुंच चुकी है ना, इस जगह पर जिसको करबला का नाम दे दिया गया है, जो कि मेन शाहराह से काफी दूर 2 दिन के फासले के ऊपर एक बेआबो बयान जगह है, जहाँ पर उन्होंने महसूर कर लिया है कि ना पर खाने पीने को कुछ नहीं है, ना साया, ना पानी, ऐसी जगह है, बिल्कुल वीराना है। तो
0: फौज
1: इब्ने ज़ियाद जो था जनाब उस वक्त गवर्नर, उसके सख्त खतूत आना शुरू हो गए उमर बिन साद को कि हुसैन पर दबाव बढ़ाया जाए, हुसैन के ऊपर दबाव बढ़ाओ। यानी कि आपने देखा जैसे कि वलीद बिन उतबा ने पहले हजरत इमाम हुसैन को बुलाया था और वहां पर कोशिश की थी कि भैया आप बैत कर लें, लेकिन वो वहां से निकल पड़े थे। अब जब यहाँ पर पहुंच गए हैं तो फिर है कि अब सख्ती शुरू करें, सख्ती। नवासे रसूल थे, यकदम से कोई भी एक्शन नहीं ले सकते थे, उस वक्त के दौर में साहबा कराम मौजूद थे, जान निसारान मौजूद थे। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई उस वक्त इतने साहबा कराम मौजूद थे तो उन्होंने हजरत सॉरी यजीद की बैत कैसे कर ली थी। तो भाई उनको नहीं था पता कि यजीद ये करने वाला है, उनको हरगिज नहीं था पता कि यजीद ऐसा ऐसा फेल करने वाला है कि अहले बैत के ऊपर पानी बंद करने वाला है, या उनको इस तरीके से ज़बह करके शहीद करने वाला है। तो कहते हैं कि जब शहादत की खबरें पहुंच गई पूरे मुल्क के अंदर, क्योंकि उस वक्त इतना कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मदीना के सब लोगों ने बैत तोड़ दी थी। सब के सब लोगों ने कहा था कि नहीं, अब हम नहीं मानते इस निज़ाम को, इतना कुछ कर लिया आपने नवासे रसूल के साथ। तो ये भी बात का वाकया है, और इसके ऊपर भी हम जब इसको ख़त्म करेंगे तो आपके साथ मजीद डिटेल के साथ आपको बताएंगे। तो 4 और 5 मुहर्रम को हालात मजीद सख्त कर दिए गए इस काफला हुसैनी के ऊपर, ठीक है जनाब। और इब्ने ज़ियाद के खतूत आना शुरू हो गए, और कहा गया उन कमांडर से, जो कि कमांडर उस वक्त करबला के मैदान में मौजूद थे, कि 4,000 का लश्कर आना शुरू हो गए कि हुसैन पर दबाव बढ़ाओ। जो करबला के मैदान में शब्द बिन रबी मजीद 4,000, यानी कि पहले 4,000 का लश्कर मौजूद था जो कि उमर बिन साद अपने साथ लेके आया था, उससे पहले 1,000 का लश्कर था, और अभी 4,000 का एक और लश्कर, यानी कि 9,000 फौजियों का लश्कर पहुंच गया था भाई इन मासूम लोगों के ऊपर, मासूम बच्चों के ऊपर, बीबियों के ऊपर, और 72 लोग थे टोटल। और उनसे इतना डरा हुआ यजीद कि 9,000 फौजी इस वक्त तक, यानी कि 5 मुहर्रम तक, उसने जंगी साजो सामान के साथ, लैस करके घोड़ों के साथ, तलवारों के साथ भेज दिया था कि जितना हो सकता है इमाम हुसैन के ऊपर दबाव बढ़ाओ कि वो बैत कर ले। जनाब, और सहरा दुश्मनों की गिनती से भरता जा रहा था, और हथियारों की झनकार बुलंद होने लगी थी, यानी कि हर तरफ से झनकार आती थी, खंजरों की, तलवारों की, घोड़ों की टाप की, और एक खौफ का माहौल सा बन गया।

0: जनाब, लेकिन इतना खौफ, लेकिन आले मोहम्मद के खैमों के गिर्द एक ऐसा मुहाफिज मौजूद था सामिन कराम, जिसके होते हुए किसी दुश्मन की हिम्मत ना थी कि मैली आंख से खैमों की तरफ देख सके। वो मुहाफिज गाजी अब्बास अलहमदार थे। जैसे जैसे यजीदी लश्कर बढ़ता रहा, गाजी अब्बास का जलाल और चौकसी बढ़ती जा रही थी। रात के अंधेरे में जब सारा सहरा सो जाता था, अब्बास तलवार थामे घोड़ों का सवार होकर खैमों के गिर्द पहरा देते थे। खैमे में मौजूद मासूम बच्चे जब बाहर चचा अब्बास के कदमों की चाप और घोड़े की टाप सुनते तो उन्हें सुकून आ जाता कि हमारा शेर दिल मुहाफिज झांक रहा है
1: मैदान करबला।
0: और खैमों के अंदर से सामिन किराम, माहौल 4 और 5 मुहर्रम को शदीद गर्म हो चुका था। शदीद किस्म की, जैसे कहते हैं कि दुश्मन के गिनती बढ़ती जा रही थी। और हजरत जैनब, जी जनाब, हजरत जैनब सलामुल्लाह अंदर बच्चों को तसल्ली देती थी खैमों के अंदर, और गाजी अब्बास जो है बाहर खैमों की तनाबों की हिफाजत करते थे। इब्तदाई 5 दिनों के अंदर सामीन कराम, एक तरफ बातिल अपने गुरूर तकबर और लश्कर की कसरत के साथ खड़ा था, तो दूसरी तरफ 72 जानिसारों का वो छोटा सा नूरानी काफिला। जी बिल्कुल, नूरानी काफिला था जिसके खैमों को जैनब सलामुल्लाह अलैह के सबर और अब्बास अलैह सलाम की वफा ने एक नाकाबले तस्खीर किला बना दिया था। ये याम दरअसल इस अजीम कुर्बानी की तैयारी के दिन थे, जो रहती दुनिया तक हक की सबसे बड़ी दलील बनने वाली थी।

0: जी सर, मैंने कि नाम आप लोगों के मैसेजेस को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उन्हें मौका देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर खलील खान।
0: जनाब क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। शाहजहान भाई सर मौजूद हैं जनाब, क्या हाल है सर? ठीक ठाक हुए तो सर? आमीन आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी माशाल्लाह, इल्म में इजाफा थींदा पिया सही? बिल्कुल सोच बिल्कुल करनी चाहिए। काफला जरा के जंग की तैयारी करके नहीं वेंदा पिया? कोई जंग की तैयारी वास्ते वेंदे ते नाल घर लांको या बालां को ते नाल गिन के नहीं वेंदे ना? उन्होंने तो कोई ऐसा इरादा को नहीं है कि ऐसा जंग लड़नी है या अगू कोई वो करना है, वो तो ही उस सफर से उन्होंने अपनी तैयारी की जिंद लोगों ने उन्होंने सदवाया है कि भाई तुम आओ सारे को एक सफर से वेंदे पैन। जी अमल की तौफीक है, वही गल तो यही कि अमल की तौफीक होनी जरूरी है सही। अल्लाह पाक हर के कोई अमल तौफीक अता करे, बहुत मेहरबानी सही। इन अलावा कोई तुम्हारा पैगाम? चलो ठीक है सर, ठीक हो गया, बहुत मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। शाहजहान मेंबर सर
2: मौजूद का
0: हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, और कहते हैं कि आई एम हीरा फ्रॉम पहाड़पुर। सर जी शो आउटस्टैंडिंग है एंड आपका अंदाज़े बयान इतना सच्चा और पुर असर है कि दिल खुद ब खुद सुनने पर मजबूर हो जाता है। आप कि इस खलूस को सलामत रखे, बहुत शुक्रिया हीरा, थैंक यू सो वेरी मच। कोशिश मेरे ख्याल में कि इंसान की इस इतनी बड़ी कुर्बानी का ये वाकया है, और उसमें अगर आप कुछ कर सकते हैं, मेरे ख्याल में आपके पास इल्म की सूरत में कुछ मौजूद है तो आप उसको ज़रूर शेयर करें लोगों के साथ। ये अच्छी बात है कि आप हमारी इस काविश को सराह रहे हैं, और आपको हमारा ये अंदाज़, हमारा ये सेगमेंट जो है जो कि दास्तानी कर्बला का है, आपको पसंद आ रहा है, बेहद शुक्रिया।

0: जी जनाब, और हमारे साथ हैं जमान जंजुआ, जनाब खान जमान जंजुआ। क्या कहते हैं, आज का प्रोग्राम, आज का सेगमेंट दास्तान करबला सुन के बहुत मज़ा आया है। और कल जो आपने मुस्लिम बिन अकील का वाक्या सुनाया था, और जिस तरीके से आपके समझाने का जो तरीका है वो बहुत मुनफरिद है, माशाल्लाह। अल्लाह आपके इल्म व अमल में तरक्की दे, आमीन जी सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। हमें सुन रहे हैं, और जब कोई इंसान मेहनत करता है किसी भी प्रोग्राम के ऊपर, सेगमेंट के ऊपर, और जब वो डिलीवर होता है, ठीक है जनाब, और उस आरजे की या प्रेजेंटर की सारी थकान जो होती है उसके लिए, उसने जितनी मेहनत की होती है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है जब आपकी तरफ से रिस्पांस आता है कि आपने जो मेहनत की है या जिस तरीके से आपने समझाने की कोशिश की है, हमें उसी तरीके से बात की जो है समझ आ गई है।
1: रहमत
0: वाकई करबला आप हर जगह सुनते हैं, हर जगह पर महफिल होती हैं, मुफ्तीहान साहबान और ख़तीब साहबान भी आपको बताते रहते हैं, लेकिन उनके पास चूंकि वक्त कम होता है, किसी एक मजलिस के अंदर 1 घंटे का वक्त होता है, आधे घंटे का वक्त होता है, कुछ मिनट्स का वक्त होता है, तो वो इतना जो है डीपली आप लोगों को बताना उनके लिए, हालांकि सबको पता होता है, जितने भी खतीब हैं वो सारे ये तारीख को पढ़ते हैं और उनको एक एक लफ्ज़ का पता होता है कि कब क्या हुआ था, लेकिन वक्त की कमी के बस नहीं, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम होता है 1 घंटा और पूरे 10 दिन हम लेते हैं आप लोगों से, तो उसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जो है आप लोगों के साथ हम ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। एक और कॉलर है हमारे साथ और उनको मौका देते हैं। अस्सलामुअलैकुम
1: अस्सलामुअलैकुम सर, तोकीर बात कर रहा हूँ आड़ा रोड से।
0: जी। तोकीर भाई, तोकीर रजान बात कर रहे हैं, कैसे हैं भाई? ठीक हैं, खैरियत से हैं?
1: आप सुनाओ, आपका प्रोग्राम तो कसम से बहुत मजा कर रहा है यार, ऐसे अभी इल्म में बहुत इजाफा हो रहा है। बिल्कुल
0: अच्छा जी, माशाल्लाह, आपको भी हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है।
1: बिल्कुल, अच्छा इस्लामी चीज तो हर अच्छी लगती है ना, अगर इंसान के दिल में कोई मुसलमान नाम का जज्बा हो ना।
0: हाँ, प्यारी बात है, ईमान का जज्बा हो तो जहाँ जहाँ कहीं भी ईमान की बात हो रही होगी तो बंदा वहां पर घुस जाता है, बैठ जाता है कि उसका ईमान ताजा हो जाए।
1: और बला का वाकया तो फिर ऐसा है ना, जैसे इसको जो जब याद करते तो ये ऐसा लगता है कि कल रूनुमा हुआ है।
0: कल रोनुमा हुआ है, हर साल हमें ऐसा लगता है कि ये वाकया अभी रोनुमा हुआ है।
1: बिल्कुल है, ये कोई चीज भुलाने के लिए तो नहीं है ना, मुसलमान है तो वो भूल तो नहीं सकता ना इसको।
0: नहीं बोल सकता, बिल्कुल। और इमाम हुसैन का जो सबक है भाई, देखें उस वक्त के जो मुसलमान थे ना, उनको भी पता था कि यजीद गलत है, ठीक
1: बिल्कुल
0: है,
1: पता
0: बिल्कुल उनको
1: था,
0: पता था, लेकिन उसने खौफ इतना पैदा कर दिया था, ठीक है ना। ये यजीद हर हर दौर के अंदर होते हैं, ठीक है जनाब, ऐसे ही माहौल बनाते हैं, लोगों के जज्बात से खेलते हैं, उनको धमकाते हैं, ठीक है जनाब, और फिर जो है अपनी मनमानी करते हैं। तो ये सिर्फ ये
1: देखो
0: नहीं कि
1: दुनिया तो
0: यजीद का एक वक्त था।
1: ये यजीद दुनिया तो बना ये बना रहा था ना, लेकिन आखिरत उसकी तो इंशाल्लाह बर्बाद है ना।
0: बस बर्बाद है, देखा नहीं, यजीद मिट गया, खत्म हो गया, हुसैन जिंदा है, जिंदा रहेगा हुसैनियत से।
1: यजीद ने सवाल किया ना, आपका नाना थे, आपका भाई और बाबा कहता था कि मैं जीत गया, आप देखो वो जीता कि मैं जीता हूँ, तो
0: हाँ
1: उसने कहा कि मेरे अगर आप अजानों में आपके नाने का नाम है तो फिर तो वो तुम जीते हो, अगर हमारे नाने का नाम मौजूद है तो हम तू हार गया हम जीत गए।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल। बस ये तो सबके सामने है, हिंदू भी इस बात को मानते हैं, काफिर भी मांगते हैं कि हुसैन की कुर्बानी ना भुलाने वाली कुर्बानी है जी।
1: लाजवाब चीज थी, लाजवाब जिंदगी, मिसाली जिंदगी थी ना, उन्होंने तो दीन के लिए कुर्बानी दी ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, दीन को बचाया जनाब, दीन को बचाया है उन्होंने, ठीक है। हाँ
1: अभी हमें हमें सोचना चाहिए हम भी कोई अच्छे काम करें दीन के लिए, टाइम निकालें।
0: ठीक, बहुत शुक्रिया तोकीर भाई, थैंक यू सो मच जी, आपने शिरकत की हमारे प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। तोकीर है हमारे साथ, आड़ा रोड से ग्लोबल FM 91 को सुन रहे हैं।

डर और खौफ के अंदर ईमान का असल पता जो है वो आपने ये जो वाकया रुनुमा हो जाता है ना, तो हज़रत इमाम हुसैन तो उन्हीं लोगों की वजह से आ रहे थे ना जो कूफा में मौजूद थे, जिन्होंने 18,000 खत लिखे थे, खतूत लिखे थे। और जब ये वाकया रुनुमा हो गया, क्योंकि देखिए ये यजीद की जो साजिश थी कि एक ब्याबो ब्याह जगह के ऊपर सहरा का हो जहाँ पर लोग आते जाते ना हो, ताकि वजह एक थी कि नवासे रसूल थे ना जनाब, लोगों को पता चलता उनका जोश मारता और वो पहुंच जाते मदद के लिए, तो जगह का इंतखाब क्या किया गया, बहुत दूर मेन शहरा से भी उनको दूर ले जाया गया और वहां पर जाकर ये जो है क़यामत बर्पा की गई है। लोग कहते हैं कि जनाब एक तौबा की तहरीक चलती है इमाम हुसैन की शहादत के बाद। वो लोग जिन्होंने खतूत लिखे थे ना इमाम हुसैन को कि आप आ जाएं यहाँ पर, तो उन लोगों को फिर पछतावा हुआ कि ये हमने क्या किया इमाम हुसैन के साथ, हमने तो उनको बुलाया और वो हमारे कहने के ऊपर आ रहे थे। और बिल्कुल ऐसे ही था, देखिए कुछ लोग तो उस वक्त रेडी हो गए थे, लेकिन फिर जब जैसे जुल्म बढ़ा शहर के अंदर, लोगों को उठाना शुरू कर दिया गया, फांसियां शुरू हो गई और घरों में औरतों को उठाना शुरू कर दिया गया, तो फिर सारे लोग डर गए थे। असल ईमान का पता भाई यहाँ चलता है। अब इमाम हुसैन के सामने 9,000 का लश्कर मौजूद है, वो नहीं डर रहे, उन्हें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कूफा के लोग डर गए थे कि मारे जाएंगे हम, जान चली जाएगी हमारी, ठीक है जनाब। तो फिर बाद में उनको बड़ा पछतावा हुआ कूफा के लोगों को, और उन्होंने एक तहरीक चलाई, ठीक है जनाब, ये तवाबीन के नाम से एक तहरीक चलती है इस वाकया के बाद। और उन्होंने भरपूर कोशिश की कि जिन लोगों ने इमाम हुसैन को शहीद किया उनसे हम बदला लेंगे, तौबा करते थे और इसके ऊपर शर्मसार भी थे कि ये हमने क्या किया, हमने तो इमाम हुसैन को बुलवा कर आधे रास्ते में छोड़ दिया। और ये वाकया फिर आपको इसके बाद हम सुनाएंगे इंशाल्लाह, जैसे ये करबला का वाकया खत्म होगा। अब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये है केस नेचुरल पाकिस्तान का, थोड़ा सा इन दिनों के अंदर हमारी तरतीब थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, ज्यादा कॉन्टेंट हमारा इस तरफ होता है। दिन बहुत पड़े हैं केसन की प्रमोशन के लिए, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो उसमें केसन के हवाले से भी आपको बताते रहेंगे। कल तक ले जा सकेंगे अल्लाह ने कहा।

शक्लों में आती है। मैं आपके लिए उतरूंगा। अल्लाह पाक की जात उतरते नहीं, असबाब बनाते हैं, और आप असबाब की दुनिया असबाब इख्तियार करेंगे। तो आपने गाड़ी वालों को भी वापस कर दिया। फिर जब पानी बस्ती में दाखिल हुआ तो कश्ती वाले तेरे पास आए। वो मैंने भेजे थे, वो कश्ती वाले खुद तेरे पास नहीं आए। मैंने असबाब आपके लिए बनाया कि आप ये असबाब इस्तेमाल कर लें, और इसी असबाब के साथ साथ फिर आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, क्योंकि आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन आपने कश्ती वालों को भी ये कहकर टाल दिया कि अल्लाह पर यकीन है। अल्लाह पर कैसे यकीन है? तकदीर जब गालिब है तो तदबीर तो करें ना। तकदीर जैसी भी है लेकिन अब तदबीर तो करें ना। कश्ती में तो बैठे ना, खुद को तो बचाएं ना। तो इसने खुद को उनको भी कह दिया कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता। फिर कहा, फिर मैंने चौथा मौका आपको दिया। तीन मौके मैंने आपको चौथा मौका दिया। कैसे? कि जब आप छत पर गए तो छत पर मैंने हेलीकॉप्टर आपके लिए भेजा। इमदादी का कारकुन जो घूम रहे थे ना कि कहीं कोई फंसा हुआ, कहीं कोई गिरा हुआ तो उनको उठा लेंगे रस्सी के जरिए, तो उन्हें रस्सी लटका दी और आपने रस्सी पकड़ने से इनकार कर दिया। क्यों? सिर्फ इस वजह से इनकार किया कि अल्लाह पर भरोसा है, हेलीकॉप्टर तो मैंने भेजा था। तो डियर सामेईन और डियर नाजरीन, तकदीर तवक्कुल का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप जो आपके पास जो वसाइल हैं उनका इस्तेमाल ना करें। हकीकत तवक्कुल ये नहीं कि इंसान असबाब से इनकार कर दे और एहतियाती तदाबीर से मुंह मोड़ ले, बल्कि तवक्कुल ये है कि पूरी तदबीर और कोशिश के साथ इंसान मेहनत करे, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे और नतीजा अल्लाह के पर छोड़ दे। तो चार दफ़ा मैंने आपको के लिए बंदोबस्त किया आपकी आपकी जान बचा लें, क्योंकि आप अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हैं। तो ये कैसे अहमकाना तवक्कुल है? ये कैसे बेवकूफ़ाना अल्लाह पर भरोसा है? ये कोई भरोसा है? आप दारुल असबाब में रहते हैं, ये दुनिया जो है ये दारुल असबाब है, और यहाँ पे असबाब की बड़ी कीमत है। अगर आप बीमार हो गए तो ये तकदीर है, लेकिन तदबीर दवाई तो लेंगे ना। आपकी दवाई मैं नहीं लेता, बस अल्लाह मुझे ठीक करेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं मर, नहीं ये तो गलत बात है। आप गिर गए, हड्डी टूट गई, आप कहेंगे अल्लाह पाक खुद जोड़ेगा इसको, मैं तो डॉक्टर के पास नहीं जाता, तो ये बेवकूफ़ाना अमल है, अहमकाना अमल है। क्योंकि तकदीर आ गई गालिब, आपकी हड्डी टूट गई, अब डॉक्टर के पास जाना ये तदबीर है, आप तदबीर करेंगे, लेकिन उसने कहा नहीं करता। आपको नाकामी हुई तो ना आपने कोशिश की थी, नाकामी हुई, ये तकदीर थी, लेकिन नाकामी को कामयाबी बदलने के लिए आप एहतियाती तदाबीर करेंगे। अब एहतियाती तदाबीर आप नहीं करते, आप खुद कहते हैं नाकामी खुद ब खुद कामयाबी में बदल जाए। तो पाँव पे पाँव रख कर कभी कामयाबी नहीं मिलती, और कभी ये आपके जो खसारे हैं, नुकसानात हैं, ये भी पूरे नहीं होते। डियर सामेईन और डियर नाजरीन, इंसान तवक्कुल करता है लेकिन उसके हिस्से में कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। इस जिम्मेदारियों के साथ वो असबाब भी इख्तियार करता है। असबाब के साथ साथ अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल बाद में करेगा। ये अजीब बात है, सिर्फ तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा, और ये कैसे मुमकिन है कि फिर आप एहतियाती तदाबीर ना करें, असबाब इख्तियार ना करें और आप मर जाएं? जिस तरह इस आदमी ने बेवकूफ़ाना और अहमकाना अमल किया, चार बार मौके इसको मिले ज़िंदगी बचाने के, ज़िंदगी बहुत कीमती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने चारों मौक़ों को मौके ज़ाया किए, और आखिरकार इसके हिस्से में ज़िल्लत भरी और बड़ी दर्दनाक मौत इसके नसीब में आई। अब ज़रा सोचे, सो न कफन न दफन, और न अपना न पराया, न रिश्तेदार न रोने वाला, बस पानी इसको बहा के ले गया। अब पता नहीं किस जगह, किस खाई में गिराया होगा, मछलियों के ग़िज़ा बन गया होगा, पता नहीं मगरमच्छ की ग़िज़ा बन गया होगा, इतनी तकलीफ दे और दर्दनाक मौत इसको नसीब हुई। तो डियर सामेईन और डियर नाजरीन, तवक्कुल कभी ये नहीं होता कि आप इस बात पर असबाब जो एहतियाती तदाबीर हैं वो छोड़ दें। या तवक्कुल का ये मतलब है, तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर इस खंजर की तेज़ी को मुकद्दर के हवाले कर। या इस तरह तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर अंजाम इसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर। ये नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, बेटे को लिटाया, छुरी ली और उस पर फेरी ज़बह करने के लिए, तब अल्लाह पाक ने इमदाद उतारी। अब ये क्या कि असबाब ने इस्तेमाल किया, अल्लाह पाक की मदद आई, उसने एहतियाती तदाबीर तो सारे किए थे। हाँ जी, तो इस लिहाज से आप खंजर उठाएंगे, जानवर को गिराएंगे, छुरी फेरेंगे, तब कहीं जाके अल्लाह पाक आपकी मदद करते हैं तो ठीक है। तो डियर सामेईन और डियर नाजरीन, असबाब का इस्तेमाल ज़रूरी है, और असबाब के इस्तेमाल के बग़ैर मुमकिन नहीं है अपनी जान की हिफाजत करना, और ऐसी हिफाजत करना कि अल्लाह पाक की इबादत आप कर सकें, आप किसी के काम आ सकें। मेहनत करोगे तो कामयाबी होगी ना, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे कामयाबी होगी? तो शर्त मशरूत ज़िंदगी यहाँ पे, अज़दारुल असबाब है, मेहनत की तो कामयाबी हुई, ठीक है। बीमारी

आपने दवाई ली, हड्डी टूटी आपने प्लस्तर चढ़ाए, तो इस तरीके से जिंदगी जो है ना डियर समी, अब दरिया है, दरिया में आपने तैरना है, तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या करना है आपने? एहतियाती तदाबीर आपने तैराकी सीखनी है। हाँ जी, खाना आपको खाना खाना है ना, तो खाना आप खाएंगे लेकिन भूख फिर बाद में मिटेगी। आप खाना खाते नहीं है, खुद सामने खाना पड़ा हुआ और आप कहेंगे मुझे अल्लाह पर भरोसा है, खुद ब खुद मेरी भूख मिटेगी। खाना सामने पड़ा है, मैं खाने को देख रहा हूँ, खाने को देखने से भूख नहीं मिटती, बल्कि आप आगे हाथ बढ़ाएंगे, रोटी को तोड़ेंगे, निवाला बना के मुँह में डालेंगे, चबाएंगे, अंदर ले जाएंगे, फिर आप कहें कि अल्लाह पाक इसको सेहत दे। आप जी खान की गाड़ी में बैठे हैं और आप कहते हैं अल्लाह मुझे, मेरी दुआ है मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, मुझे पेशावर पहुँचा दे, और दुआएँ करते रहें और अल्लाह पर भरोसे के नारे भी लगाते रहें और चीखते रहें, ये दावा तुम्हारा गलत है। दावा और दुआएँ और दवा तब कारामद आती हैं जब आप पेशावर की गाड़ी में बैठ कर अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह पर भरोसा करें कि अल्लाह मुझे खैर वाफियत से पहुँचा दे। ये नहीं कि आप डी खान की गाड़ी में बैठ जाएं और दुआ करें कि मुझे पेशावर पहुंचा दे, या पेशावर की गाड़ी में बैठ जाएं और आप कहें कि मुझे इस्लामाबाद पहुंचा दे। नो, नेवर, ऐसा कभी नहीं होता। तवक्कुल का कभी ये मतलब होता ही नहीं है कि आप इस तरीके से अहमकाना और बेवकूफ़ाना और स्टूपिड किस्म के एक्ट करें। तो इससे मना किया गया, ये दारुल असबाब है और इसमें असबाब आपने इस्तेमाल करने होंगे। इंसान को अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा और यकीन होना चाहिए डियर सामीन ओडिन, लेकिन इसके साथ साथ जायज़ असबाब भी इख्तियार करने ज़रूरी हैं। हकीकी तवक्कुल यही है डियर सामीन कि इंसान कोशिश करे और नतीजे अल्लाह पर छोड़ दे, और अल्लाह ताला पर भरोसा ज़रूर करें मगर इसकी अता करदा असबाब जो नज़रअंदाज न करें, क्योंकि बहुत मरतबा अल्लाह तबारक ताला की मदद इन्हीं असबाब के अंदर पोशीदा होती है। जिस तरह चार मौाक़े उसको मिले, यही अल्लाह पाक की मदद थी, यही अल्लाह पाक का इमदाद थी, यही अल्लाह पर भरोसा करने का नतीजा था कि अल्लाह पाक ने चार दफ़ा उसको मौके मिले दिए, लेकिन इसने मौके ज़ाय किए। तो डियर सामेईन और डियर नाजरीन, हशर दे दिहाड़े भरे मेल दे विच, हशर दे दिहाड़े भरे मेल दे विच, तैकू जिंदगी दा कसीदा सुने सों, इमें कौन पुत्रें को खूज सटेंद, इमें कौन पुत्रों को खूज सटेंद, तैकू खुदकुशी दे उथई हाल दे सों।

0: हम खून की किस्तें तो कई दे चुके लेकिन, हम खून की किस्तें तो कई दे चुके लेकिन, ए खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। हशर दे दिहाड़े भरे मेल दे विच, हशर दे दिहाड़े भरे मेल दे विच, तैकू जिंदगी दा कसीदा सुने सों, इमें कौन पुत्रें कु खूई सटेंद है, तैकू जिंदगी दे तैकू खुदकुशी दे उथई हाल दे सों, हशर दे दिहाड़े भरे मेल दे विच,
1: यही
0: हशर दे दिहाड़े भरे मेल दे विच, तैकू जिंदगी दा कसीदा सुने सों, इमें कौन पुत्रें कु खूई सटेंद है, तैकू खुदकुशी दे उथई हाल दे सों। फी अमानिल्ला, हयात बाकी तो मुलाकात बाकी।

0: Radio Ama Network, News and Information Station. Welcome to Radio Ama 88.4.
1: You are listening to Radio Ama Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
0: Rocking with the band. 88.4 Live.

0: चढ़ाई माशे में जी दर्द हो गया ये जी पता शापर सीधे तसे हो कस्ती थी
1: जनाती से तार खाना पर शापर के हमें इसमा वाशिंग पाउडर हो कस्ती थी
0: इसमा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वाल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सारा प्रोवरे
1: बिल्कुल तार खाना दा गिले वे हर वक्त मुता हाँ कुर्श डाले हो चे कराना में कुर्ता इसमा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी और स्टूल कुर वाला ना पासूल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब वो दर तो ये या चेप इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सब यूजुअली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना न खर पाई
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दर तो ये जी दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने गल से अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शे मार की से